जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी भर आया मिनट गर्मी दिपे मामम अगर दुखा दर समाए